0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। सुनते हैं एक सुंदर सुविचार जिसे हमें भेजा है प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, इसलिए सुख में विनम्र रहें और दुख में धैर्य रखें, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है,
1: नमस्कार, उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में आप जिस विषय की जानकारी को समाहित करते हैं उसका पूरा इतिहास अच्छे से सरल शब्दों में समझाकर बताते हैं, जिसे बच्चों को भी समझ में आ सके। 13 से 17 जुलाई वाले सप्ताह में आपने पुस्तकों के उद्भव और विकास की कहानी को व्यापक जानकारी देकर बताया। इसी सप्ताह आपने मानसून, अरावली की कहानी और हिमालय की उत्पत्ति पर संग्रहणीय भौगोलिक जानकारी दी। पूरी उमंग टीम को हमारी ओर से हार्दिक धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार संदेश भेजने के लिए। संघ संकारा सोमनी, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा

0: देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
1: रायगढ़ छत्तीसगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास कृष्ण कुमार यादव और बल्लू निषाद।
0: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निहत परवीन शाहनवाज, सरफराज फरदीन सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
1: आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि संदेश भेजते रहिए और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से।
0: जी, ये भी जानिए श्रृंखला की इस कड़ी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम या भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल हुए कुछ ऐसे लोगों की,
1: जिन्हें महात्मा गांधी और अन्य प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों की तरह नाम और प्रसिद्धि तो नहीं मिली, लेकिन उनका योगदान भारत को स्वतंत्र कराने में किसी से कम न था।
0: उन गुमनाम और कम चर्चित लोगों में से आज हम जिनकी चर्चा करेंगे उनका नाम है पिंगली वेंकैया। बहुत कम हैं जो इस नाम को जानते हैं, तो श्रोताओं आपको बता दें कि वो पिंगली वेंकैया ही थे जिन्होंने हमारे प्यारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डिजाइन किया था।
1: श्रोताओं, उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी, कृषि वैज्ञानिक, भाषा विद्वान और भूविज्ञानी थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई के बाद उन्होंने कई भाषाओं का अध्ययन किया और महात्मा गांधी के संपर्क में आए।
0: वे ब्रिटिश भारतीय सेना में थे और उन्हें बहुत बुरा लगता था जब ब्रिटेन के झंडे को एक भारतीय सैनिक की हैसियत से उन्हें सलामी देनी होती थी। उन्हीं दिनों में उनके मन में एक तीव्र इच्छा जागृत हो गई कि भारत का भी अपना राष्ट्रीय ध्वज हो। समय बीता, वे गांधी जी के संपर्क में आए और स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए।
1: जब राष्ट्रीय ध्वज बनाने की बात आई तो इसके लिए पिंगली वेंकैया जी को ही चुना गया। लगभग 5 वर्षों तक उन्होंने दुनिया भर के झंडों का गहरा अध्ययन किया और करीब 30 डिजाइन संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किए। उनमें से आज का हमारा प्यारा तिरंगा चुना गया। श्रोताओं, वेंकैया जी का निधन 4 जुलाई 1963 को हुआ। उन्हें हमारा शत शत नमन।
0: श्रोताओं, तिरंगा हमारी जान है, आन है और शान है
1: जी।
0: लेकिन बहुत जरूरी है ये जानना कि हम इसका सम्मान कैसे करें। आइए कुछ प्रमुख नियमों को जानते हैं।
1: श्रोताओं, पहली बात, राष्ट्रध्वज हमेशा सम्मान पूर्वक फहराया जाना चाहिए। कभी भी इसे जमीन, पानी या फर्श को छूने नहीं देना चाहिए।
0: कभी भी फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त तिरंगा नहीं फहराना चाहिए। ध्वज का उपयोग किसी अन्य प्रकार से कभी नहीं होना चाहिए, जैसे मेजपोष, पर्दे, कुशन या सजावट की वस्तु के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
1: श्रोताओं, तिरंगे पर कुछ भी लिखना, चित्र बनाना या इसके वास्तविक रूप से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए
0: जी।
1: और हाँ, यह बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी अन्य ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या अधिक सम्मानजनक स्थान पर नहीं लगाया जा सकता।
0: जी हाँ श्रोताओं, तिरंगा हमें केवल अधिकारों की याद नहीं दिलाता बल्कि हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। जब भी हम तिरंगे को देखें तो अवश्य उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करें जिनकी कुर्बानियों से हमें आजादी मिली।
1: तो आइए श्रोताओं, हम सभी संकल्प लें कि हम अपने राष्ट्र ध्वज का सदैव सम्मान करेंगे, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे
0: जी। और अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: तो श्रोताओ, आज का प्रश्न है, राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए थे। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन तैयार किए थे।
1: श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब करते हैं रुख आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर और सुनते हैं कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस।
0: इस कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताया गया है। विशेष रूप से उनके द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज की चर्चा की गई है।
2: तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बता सकते हो ये बात किसने कही थी? भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतवासियों से खून की मांग करने वाले इस देशभक्त का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जमकर टक्कर ली। देश के लिए जान न्योछावर करने वाले इस वीर का जन्म 23

0: जनवरी सन 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर जानकीनाथ बोस कटक के एक प्रतिष्ठित वकील थे। सुभाष की प्रारंभिक शिक्षा कटक में हुई और कॉलेज की पढ़ाई कलकत्ता में। जब वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में बीए के छात्र थे, तभी एक दिन
1: अरे दिलीप।
2: हाँ सुभाष।
1: अरे उधर कहाँ जा रहे हो भाई, कक्षा में नहीं चलना क्या? वो प्रोफेसर ओटन का पीरियड है ना?
2: हाँ है तो सुभाष, लेकिन कक्षा में मैं नहीं जाऊंगा। प्रोफेसर ओटन जिस तरह हम भारतीयों को गाली देते रहते हैं, मुझे उससे सख्त नफरत है।
1: अरे तो तुम क्या समझते हो, मुझे गालियां खाने का शौक है, है? मगर इस तरह कक्षा में ना जाने से क्या होगा भाई?
2: कक्षा में नहीं जाएंगे तो अंग्रेज के मुंह से अपने देश के बारे में अपमानजनक बातें तो नहीं सुनेंगे ना?
1: अरे इस तरह कहां कहां से बचोगे? प्रोफेसर ओटन कोई अकेला अभिमानी अंग्रेज तो है नहीं इस देश में। स्कूल, कॉलेज, घर, दफ्तर, हाट बाजार, सभी जगह तो ये लोग हमारे लाखों करोड़ों देशवासियों को लांछित और अपमानित करते रहते हैं।
2: तो फिर?
1: और हमारा दोष ये है कि हम विरोध करने की बजाय पीठ फेर कर चले जाते हैं। जिस दिन हमने सामने खड़े होकर इनका विरोध करना शुरू कर दिया ना, उसी दिन से इनका गाली देना भी बंद हो जाएगा।
2: कहना आसान है सुभाष, इन गोरों के आगे विरोध करने के लिए खड़ा कौन होगा?
1: हमारे तुम्हारे जैसे लोग ही खड़े होंगे बंधु, जिनका ये लोग सत्ता के नशे में चूर होकर दिन रात अपमान करते रहते हैं।
2: सुभाष, प्रोफेसर ओटन आ रहे हैं।
3: Hey, you idiots! क्लास का टाइम में इधर खड़ा होकर क्या करता तुम?
1: आप ही के बारे में बात कर रहे थे प्रोफेसर ओटन।
3: Is that right? You black monkey?
2: जी सर, वो ऐसा था जी कि सर।
3: What? जी जी, बोलता क्यों नहीं, क्या बात करता था?
1: हम ये कह रहे थे कि आप टीचर हैं, आपके मुंह से बात बेबात गाली शोभा नहीं देती।
3: You bloody rascal! You are telling me what to do? तुम्हारा यह हिम्मत?
1: हिम्मत की बात ना कीजिए प्रोफेसर, हिम्मत तो इससे भी ज्यादा है।
3: तो क्या करेगा? हा? क्या करेगा तुम? मारेगा हमको? You scoundrel! You bloody swine! बोलो क्या करेगा तुम? हम तुमको गाली देगा, तुम्हारा बाप को गाली देगा।
1: बस प्रोफेसर बस, इससे ज्यादा एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं।
3: ठीक है, हम तुमको देख लेगा। क्या नाम है तुम्हारा?
1: मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है मिस्टर ओटन, आइंदा याद रखिएगा।
0: अन्याय और अत्याचार के खिलाफ ये सुभाष की पहली जंग थी। परिणाम ये निकला कि उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया, लेकिन सुभाष को कोई अफसोस नहीं हुआ। बाद में दूसरे कॉलेज से उन्होंने बीए पास किया। फिर अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की। लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि आईसीएस के बंधन में बंधकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना असंभव है, इसलिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और स्वदेश लौट आए। बंबई आते ही वे महात्मा गांधी से मिले। गांधी जी के शांतिपूर्ण सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम उन्हें पसंद नहीं आए। गांधी जी ने उनकी परेशानी को समझा और उन्हें सलाह दी कि वे कलकत्ता जाकर देशबंधु चितरंजन दास से मिलें। देशबंधु के विचार सुभाष के जोशीले स्वभाव के अनुकूल थे। बस फिर क्या था, देशबंधु के नेतृत्व में सुभाष ने बंगाल के युवकों को संगठित करना शुरू किया। उन्हीं दिनों इंग्लैंड के युवराज भारत की यात्रा पर आए। कांग्रेस ने प्रस्ताव किया कि युवराज के दौरे का पूर्ण बहिष्कार हो और हड़ताल की जाए। बंगाल में यह हड़ताल अभूतपूर्व रूप से सफल हुई। सभी बड़े नेता बंदी बनाए गए।
4: कहते हो सभी नेता पकड़े गए?
2: अरे ये महात्मा जी का आंदोलन है भाई, यहाँ नेता लोग जनता के आगे खड़े होते हैं, पहली लाठी गोली खुद खाते हैं, पहले जेल खुद जाते हैं।
4: तो क्या देशबंधु भी पकड़े गए?
2: हाँ, सबसे पहले तो उन्हीं को पकड़ा।
4: और अपने सुभाष बाबू?
2: वो भी आते ही होंगे। जब पुलिस हम लोगों को गाड़ी में भर रही थी, तब भी वे बचे हुए लोगों को आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहे थे।

0: लो ये एक और दल आ गया और शायद सुभाष बाबू भी साथ ही है।
1: क्यों सुभाष दा,
2: कितनी सजा हुई?
3: नालायक कहीं की सजा भी ठीक से नहीं दे सकते, उसमें भी कंजूसी कर गए।
4: क्या हुआ सुभाष बाबू?
3: अरे होगा क्या, इतनी बड़ी हड़ताल हुई और सजा दे रहे हैं सिर्फ 6 महीने की। मैं देशभक्त हूँ कि कोई मुर्गी चोर?
5: लेकिन इसके बाद से जेल यात्राओं का ऐसा दौर शुरू हुआ कि 1921 से 1940 के बीच सुभाष लगभग 16 बार जेल गए। जब जेल में रहते तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता, लेकिन जैसे ही जेल से छूटते फिर आंदोलन में जुट जाते। बार बार जेल जाने से उनका स्वास्थ्य इतना गिर गया कि उन्हें टीबी हो गई। जब भोवाली सेनेटोरियम में भी स्वास्थ्य नहीं सुधरा तो उन्हें स्विट्जरलैंड जाने की अनुमति दी गई। वहां पहुंचकर वे यूरोपीय देशों में भारत के प्रति सहानुभूति का वातावरण बनाने में लग गए। 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1939 में वे फिर अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के भीतर ही एक प्रगतिवादी दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तभी दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। एक बार फिर सुभाष और गांधी जी का मतभेद सामने आया। गांधी जी अंग्रेजों पर आई विपत्ति का फायदा नहीं उठाना चाहते थे, जबकि सुभाष का कहना था कि इस समय अंग्रेज दूसरे मोर्चों पर फंसे हुए हैं, उनकी पकड़ हिंदुस्तान पर से ढीली हो रही है, यही सही वक्त है जब हमें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर लेना चाहिए। सुभाष के ऐसे वक्तव्यों से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1940 में उन्हें फिर बंदी बना लिया। सुभाष ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। इस पर सरकार ने उन्हें जेल से तो छोड़ दिया, लेकिन उनके घर पर सशस्त्र पुलिस का कड़ा पहरा बैठा दिया।
3: कौन? शिशिर?
6: हाँ सुभाष काका, मैं हूँ, दरवाजा खोलिए।
3: आओ अंदर आ जाओ, क्या खबर है?
6: सब तैयारी हो गई है, पीछे वाली गली में गाड़ी खड़ी है। कलकत्ता में आपका दिखाई देना ठीक नहीं है काका। ये सोचकर हम लोगों ने योजना बनाई है कि आप बिहार में गोमो से ट्रेन में बैठेंगे, मैं स्वयं गाड़ी चलाकर ले चलूंगा।
3: ठीक है चलो, लेकिन मेरे ये कपड़े?
6: उसका भी प्रबंध हो गया है, आपके लिए तंग पैजामा, शेरवानी और तुर्की टोपी आ गई है। आप रास्ते में कहीं बदल लीजिएगा।
3: ठीक है।
6: उस वेशभूषा में आपकी ये दाढ़ी बिल्कुल ठीक लगेगी, किसी को शक नहीं होगा कि आप सचमुच मौलवी जियाउद्दीन नहीं है।
3: तो फिर ठीक है, आओ चलें।
6: चलिए।

0: 16 जनवरी की रात वे पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंककर गायब हो गए। इसमें उनके भतीजे शिशिर बोस ने उनकी मदद की।
1: दरवाजा खोलिए साहब, मैं रेलवे कर्मचारी हूँ। इन मौलवी साहब का रिजर्वेशन है यहाँ से।
2: खोलता हूँ भाई, खोलता हूँ, अभी खोल देता हूँ। आदाब अर्ज़ है मौलवी साहब।
3: आदाब, ये सामान यहाँ रख दीजिए।
2: लाओ लाओ।
3: शुक्रिया शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गार्ड साहब।
1: नहीं साहब, इसमें शुक्रिया की क्या बात है।
3: अच्छा, खुदा हाफिज।
1: खुदा हाफिज साहब।
4: लो भाई, यहाँ तक तो आसानी से आ गए, अब कल न जाने क्या हो। ये अखबार कहाँ गए?
1: हाँ, ये रहा।
4: कल दिन भर पढ़ने के

0: साथ साथ चेहरा छिपाने के भी काम आएगा।
1: अब थोड़ी देर आराम कर लूं।
2: ट्रेन से पेशावर पहुंचने पर सुभाष को कुछ विश्वस्त साथी मिले जिन्होंने सीमा पार करने में उनकी मदद की। इस तरह कभी पैदल, कभी खच्चरों पर, तो कभी ट्रक वालों से मुफ्त सवारी मांगते हुए सुभाष काबुल पहुंचे। काबुल में उन्होंने कई विदेशी दूतावासों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की और आखिर इटालियन दूतावास के जरिए यूरोप जा पहुंचे। उन्होंने जर्मनी में हिटलर से भेंट की। सुभाष ने बर्लिन में रहकर वहां रहने वाले भारतीयों को इकट्ठा करके फ्री इंडिया लीग की स्थापना की। जर्मनी की सहायता से उन्होंने आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण आरंभ किया। स्वयं सुभाष भी इस पर अपने विचार व्यक्त करते थे। उधर जापान में भी एक पुराने भारतीय क्रांतिकारी श्री रास बिहारी बोस भारत को स्वतंत्र कराने के प्रयत्नों में लगे हुए थे। इन लोगों की योजना थी कि युद्ध में ब्रिटेन की ओर से लड़ रहे जिन भारतीय सैनिकों को जापान और जर्मनी में बंदी बना लिया है, उनकी एक सशस्त्र सेना संगठित की जाए। इस सेना का नेतृत्व करने के लिए सुभाष को सिंगापुर बुलाया गया। 5 जुलाई 1943 को उन्होंने सुप्रीम कमांडर की हैसियत से आजाद हिंद फौज के विधिवत गठन की घोषणा की। सहारा लेना उचित नहीं है, मगर नेता

0: का सहारा लेना उचित नहीं है, मगर नेताजी का कहना था कि शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है और उससे मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। उधर युद्ध की भीषणता बढ़ती जा रही थी। आजाद हिंद फौज की टुकड़ियों ने भी कई मोर्चों पर युद्ध किया। खराब मौसम, कम रसद और बीमारियों के बावजूद नेताजी के सैनिकों के हौसले बुलंद थे। बर्मा की ओर बढ़ती हुई आजाद हिंद फौज कोहिमा तक पहुंच गई। भारत भूमि पर आजाद हिंद का झंडा फहराया गया, मगर इस बीच बहुत से सैनिक हताहत हुए। आजाद हिंद फौज को और अधिक बलिदानी वीरों की आवश्यकता थी। 22 सितंबर 1944 को रंगून का जुबली हॉल खचाखच भरा हुआ था। शहीद जतीन दास का स्मृति समारोह था। जय हिंद और दिल्ली चलो के नारे गूंज रहे थे।
1: मेरे बहादुर साथियों, तुम लोगों ने आजादी के लिए बहुत त्याग किया है, लेकिन अभी प्राणों की आहुति देना बाकी है। मैं भारत की स्वतंत्रता को स्पष्ट देख रहा हूं, वो अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अभी उसे खून की जरूरत है। उसे ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो अपने हाथों अपना सर काट कर उसके चरणों पर न्योछावर कर सके, जो उसके लिए अपना खून बहा सके। बोलो साथियों, क्या तुम लोग तैयार हो?
2: हम तैयार हैं।
1: तो फिर ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
3: नेताजी, मेरे खून की एक एक बूंद ले लीजिए।
1: नहीं नहीं नहीं, इस तरह बातें बनाने से कुछ नहीं होता। मुझे इस प्रतिज्ञा पत्र पर तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए।
4: मुझे दीजिए कागज, पहले मैं हस्ताक्षर करूंगी।
1: ठहरिए, ये आजादी का परवाना है, इस पर सादी स्याही से हस्ताक्षर नहीं किए जाते, इस पर खून से हस्ताक्षर होते हैं। जिसकी नसों में सच्चा भारतीय खून बहता हो, जिसे अपने प्राणों का मोह ना हो, वो आगे बढ़े और इस पर हस्ताक्षर करे।
5: मैं करूंगी हस्ताक्षर, कागज मुझे दीजिए।
2: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं,

और उस दिन नेताजी के आह्वान पर सैकड़ों हजारों लोगों ने आगे बढ़कर आजादी के उस परवाने पर अपने खून से हस्ताक्षर किए। पता नहीं उनमें से कितने आजादी की सुबह देखने को जिंदा रहे और कितने आजादी की राह में शहीद हो गए।

0: खुद नेताजी का विमान 18 अगस्त 1945 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 15 अगस्त 1947 की सुबह देखने के लिए नेताजी जीवित नहीं रहे, मगर जैसा उन्होंने खुद कहा था,
1: ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हम में से कौन भारत को आजाद देखने के लिए जीवित रहेगा। यही काफी है कि भारत आजाद होगा और उसे आजाद करने के लिए हम अपना सर्वस्व अर्पित कर देंगे।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस, और आइए अब सुनते हैं एक विशेष गीत जिसने भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान असंख्य युवाओं को प्रेरणा दी और उन्हें क्रांति पथ पर अग्रसर होने के लिए आह्वान किया। शीर्षक है जवानों उठो।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा देश के जवानों को संदेश दिया गया कि वे देश के लिए पूरे समर्पण और दृढ़ निश्चय के साथ काम करें और इसे विकास की दिशा में आगे ले जाएं।

0: साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
3: நேர்கள் இதுவரை கேட்டது NCERT வழங்கும் விளம்பரதார நிகழ்ச்சி. இனி கேட்கலாம் 4 மணிக்கான செய்திச் சுருக்கம். சென்னையிலிருந்து அஞ்சலாக.

0: हैं। हमेशा की तरह अर्थनीति, कारोबार और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों के साथ हम इन पर चर्चा भी करेंगे और चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है देश के जाने माने वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह जी को। सिद्धार्थ जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मनोज जी।
0: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं निशित कुमार।
2: The benchmark domestic indices end with modest losses. Sensex falls nearly 200 points. Nifty settles below 24,450. India's retail inflation rises to 4.45% in July this year. And global oil supply and demand expected to fall this year amid geopolitical headwinds, says International Energy Agency, adds both to rebound next year.
0: घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली से घाटे के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक, सेंसेक्स लगभग 200 अंक नीचे आया, निफ्टी 24,450 के स्तर से नीचे आकर हुआ बंद। देश में खुदरा मुद्रा स्फीति की दर इस वर्ष जुलाई में बढ़कर 4.45% पर पहुंची और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा भू राजनैतिक तनावों के कारण इस वर्ष तेल की आपूर्ति और मांग में गिरावट होने के हैं आसार, ये भी कहा अगले साल बढ़ सकती है मांग।
2: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
0: आइए शुरुआत करते हैं घरेलू शेयर बाजार से खबरों का सिलसिला। घरेलू शेयर बाजार में आज कुल मिलाकर बिकवाली तेज रही, प्रमुख सूचकांक मामूली घाटे के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 188 अंक यानी 0.24% नीचे आकर 77,966 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 36 अंक यानी 0.15% नुकसान के साथ 24,436 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो वहां मिला जुला रुख था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप 100 इंडेक्स 0.3% लाभ में रहा, जबकि स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में 0.2% की गिरावट आई।
2: The benchmark domestic equity indices ended with modest losses today. The Sensex dipped 188 points or 0.24% to close at 77,966. The Nifty dropped 36 points or 0.15% to settle at 24,436. In the broader market, on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index gained 0.3%, while the small-cap 100 index fell 0.2%. The markets opened on a weak note amid elevated crude oil prices and geopolitical uncertainties. The Sensex and the Nifty remained under pressure and witnessed broad-based selling. However, both indices pared their intraday losses during the last half an hour of trade.
0: आइए नजर डालते हैं सेंसेक्स पैक पर। सेंसेक्स पैक में आज 30 में से 21 कंपनियां घाटे के साथ बंद हुए। सबसे अधिक घाटा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को हुआ, जिसके शेयर 3.7% नीचे आकर बंद हुए। महिंद्रा एंड महिंद्रा को 1.7% का और टाटा स्टील को 1.6% का नुकसान उठाना पड़ा। उधर मांग निकलने से भारतीय स्टेट बैंक के शेयर 1.3% लाभ में रहे। भारतीय एयरटेल को 1.1% से अधिक का मुनाफा हुआ और अल्ट्राटेक सीमेंट के दाम लगभग 0.5% से थोड़े से ऊपर आकर बंद हुए।
2: एंड इन द सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 14 आउट ऑफ 28 सेक्टर्स एंडेड इन द नेगेटिव जोन। अमंग द टॉप लूजर्स हॉस्पिटल्स डिप 2.8%, आईटी लॉस्ट 1.4% एंड फोकस्ड आईटी फेल 1.5%। इन कॉन्ट्रास्ट टेलीकम्युनिकेशंस क्लाइम्ड 1.9%, पीएसयू बैंक्स रोज 1.8% एंड मिड स्मॉल प्राइवेट बैंक्स quality tilt added over 0.8%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative as shares of 2,462 companies declined, 1,867 advanced and 196 remained unchanged.
0: नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 10 पैसे मजबूत हुआ। 95 रुपए 33 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। सिद्धार्थ जी, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। एक और प्रमुख सूचकांक थोड़े से घाटे में दिखे हैं, जबकि विस्तारित बाजार में मिला जुला रुख रहा है। एनएसई का मिड कैप 100 इंडेक्स थोड़ा सा लाभ के साथ बंद हुआ, क्या रुख दर्शा रहा बाजार?
2: नहीं देखिए मनोज जी, कहीं ना कहीं अभी भी बाजार जो बड़ी जियोपॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी है, जो अमेरिका और ईरान की जो युद्ध के बाद जो अनिश्चितता बनी हुई, वो अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। साथ साथ उसी की वजह से हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो क्रूड ऑयल या जो कच्चे तेल के दाम हैं उनमें दोबारा से हमने तेज़ी देखी है। तकरीबन $90 के आसपास दोबारा क्रूड ऑयल के दाम पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं बाज़ार में जो इमीडिएट रीज़न एक प्रेशर उसका दिखा। साथ ही हमारी बाज़ार में आज एक और बड़ा कारण था, वो आप जो कह सकते हैं एक बड़ी जो उद्योग जो समूह है, कॉरपोरेट ग्रुप है, उसके जो चेयरमैन थे उन्होंने जो है अपना अनाउंस किया कि वो अब उससे इस्तीफा दे रहे हैं उस पोजीशन से। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी उस खासकर उस कॉरपोरेट ग्रुप के जो शेयर्स थे, क्योंकि वो तकरीबन हर सेक्टर आप देखेंगे तो हर सेक्टर में उस ग्रुप का जो है कहीं ना कहीं विजिबिलिटी है उसको, तो उसमें भी हमने गिरावट देखी। तो मुझे लगता है प्रमुख जियोपॉलिटिकल क्रूड ऑयल के दाम और जो तेज़ी और इसकी वजह से, और जो एक और अनिश्चितता आ रही है जो अमेरिका में जो है महंगाई और वहाँ पे इंटरेस्ट रेट का क्या होगा, वहाँ का फेड क्या करेगा। क्योंकि जब से नए फेड चेयरमैन आए हैं केविन वॉश, उन्होंने एक बात तय कर दी है कि वो कोई भी गाइडेंस नहीं देंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं एक अनिश्चितता लेके आ रहा है।
1: सिद्धार्थ, इफ वी मे टॉक अबाउट यू नो द फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स व्हिच वर pretty kind of encouraging, if you may say so, and that sustained the market to quite an extent. But do you see that steam kind of losing out, and the West Asian crisis, as you mentioned, kind of having an overarching effect on the Indian markets?
2: Yes. Good evening, Nishit. To start with, and to answer to your question, obviously yes, because as it was not widely expected that our Q1 results, because if you look at the US-Iran conflict, it started towards the end of February.
1: Yes.
2: So it was expected, and obviously we being major importers of energy, almost 90% of our energy is imported, it was expected that it would have a huge impact on the Indian economy. But yes, the way the government of the day handled the supply side situation, the way not only the distribution, also the management of supplies, fertilizer, so everything was done, I would say, in a very responsible and also in a very timely manner. So I think so we had very good Q1 results, but yes, the geopolitical uncertainty is now become a certainty. So that is having a very huge impact on our markets, and also the way we are seeing the crude oil, obviously, because we have huge importers, so obviously it is reflected on the Indian markets. And despite having good Q1 results, and also if you look at our macroeconomic fundamentals also, if you look at even inflation has now inched up over 4%, which is a little over 4%. So even then, inflation also, even the GDP numbers and also the estimate, the forecast is still within whatever we had RBI had projected. In fact, it's improved its estimate in the last monetary policy. So I don't see any macroeconomic fundamental going wrong, but yes, the geopolitical uncertainty of the US President Mr. Trump is looming large on our Indian stock markets.
1: Right. So uncertainty is the new certainty. Nicely put, Siddharth. If we talk of you mentioned about the chairperson of a large conglomerate kind of putting in his papers of obviously his tenure kind of ends in February 2027. But do you see these kind of events, these are kind of black swan events, if I may say so, in the corporate world? Do you really see that these kind of events kind of having that kind of impact which you saw today, especially in the companies of that group?
2: See, I don't see anything if one person going out from such a huge conglomerate. Yes, definitely he was he played a very important role for long years in that group.
1: So almost close to 4 decades.
2: Yeah, yes. 4 decades. He's risen from the ranks.
1: Correct.
2: So obviously he had a very strong influence in the growth of that group. So obviously his going obviously creates a little bit of uncertainty. But if you look at the group, we are not mentioning
3: mentioning here.
1: The name of the group.
3: But we can say also, because there's nothing...
1: Nothing wrong with that.
3: So the Tatas. But if you look, that is, the Tatas are not known for any individual. They're known for, you know, very broad-based leadership. Yeah, and also...

0: They've kind of they're known for corporate governance. I would say they are known for setting standards for corporate governance. So I don't see that investors should be jittery, but yes, markets do react to these kind of news, and it's a very short term reaction.
1: And
0: probably
1: in fact, Siddharth, if I may put in a fact here, you know, just a decade back, if you remember, you know, when the erstwhile chairperson of the Tata Group, he was kind of jettisoned out of the, you know, of the group, and this Mr. Chandrasekharan, when he was brought in, handpicked rather by Ratan Tata, and he has in fact delivered, you know, over the past decade or so, taking, you know, the company from, you know, from strength to strength, kind of. So yes, obviously, it would have some kind of a splinter effect on the market, and probably, you know, in the coming weeks or maybe even days, even, you know.
0: I don't see it lingering for a long time. Obviously, we will see some kind of announcement from the Tata Group also coming in, and I don't see anything, any kind of negative impact on the company or the group companies.
1: Absolutely.
2: सिद्धार्थ जी, यानी अभी जो हमने चर्चा की उसमें आपने विशेष रूप से कहा और निश्चित ने भी उसे दोहराया कि अनिश्चितता निश्चित एक कह लें कि स्थिति बन गई है वर्तमान माहौल में. ऐसे में जो हमारे श्रोता हैं, हमारे निवेशक हैं, उनको अपना निवेश किस रूप में रखना चाहिए कि अनिश्चितताओं के दौर में जब बाज़ार में गिरावट यानी सूचकांक काफ़ी ऊंचे स्तर से लगातार नीचे स्तर पर और अब तो एक रेंज बाउंड यदि जिसे हम कहते हैं उसमें आगे पीछे थोड़ा थोड़ा हो रहा है, वहाँ उनको अपना निवेश किस रूप में रखना चाहिए ताकि साल के अंत में या दो साल में उन्हें अपने निवेश पर नुकसान ना उठाना पड़े.
0: नहीं मनोज जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा. अगर मैं इसका जो आंसर जवाब शुरू करूं, जब ट्रंप साहब अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने जो टैरिफ्स लगाए दुनिया के करीब करीब कई सारे देशों पे, जिसमें भारत भी जिसका पार्ट था, तो उस समय आपने देखा होगा हमारे बाज़ारों में एकदम से जो है काफ़ी गिरावट आई. कुछ दिनों तक वो सिलसिला चला, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि FIIs ने तो लगातार निकासी की, लेकिन जो हिंदुस्तान का रिटेल इन्वेस्टर था और साथ साथ जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनका विश्वास हमारी बाज़ार पर लगातार कायम रहा. तो मैं आपके सवाल का जवाब यही दूंगा, एक निवेशक को जैसे कि जैसा हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी बाज़ार में पिछले लगातार दो साल की अनिश्चितता में जो अपने विश्वास को कायम रखा है, मुझे लगता है उसमें कोई भी कारण नहीं है कि उस विश्वास में किसी तरह की कमी आए या उनके निवेश में कमी आनी चाहिए. मुझे लगता है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, और हिंदुस्तान के जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, चाहे वो ग्रोथ का पैरामीटर देख लें, आप महंगाई दर देख लें, साथ साथ आप सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, चाहे रिफॉर्म्स हों, चाहे मेक इन इंडिया को लेकर जो PLI स्कीम्स हैं, जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव्स हैं, हमने अभी सेमीकंडक्टर मिशन को भी की भी घोषणा की है, और उसके अलावा अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे जो कॉरपोरेट टैक्स हो या GST का कलेक्शन हो, तो या UPI का जो पेमेंट्स का जो डेटा आ रहा है उस सब में कहीं ना कहीं, या जो गाड़ियों की जो बिक्री हो रही है उसका डेटा, तो उसमें जो है मुझे किसी भी तरह की कोई चिंता का विषय बिल्कुल नहीं लगता. हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये ऐसा पीरियड है, और ख़ासकर हमारे लिए, क्योंकि हम जो है हम अपनी 90% जो ऊर्जा की जो मांग है, जो पूर्ति है, वो विदेश से करते हैं, बाहर से लाते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा ये हमारे ऊपर बिल्कुल, जहाँ थोड़ा महंगाई पर भी प्रेशर दिखाई दे रहा है, साथ साथ थोड़ा इकोनॉमी पर भी एक प्रेशर दिखेगा कुछ दिन के लिए.
2: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, चलें वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले एशिया पर ध्यान दें तो एशिया के प्रमुख बाजार दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 3.7% की वृद्धि आज हुई है. जापान का निक्की 225 सूचकांक 0.8% से अधिक लाभ के साथ बंद हुआ. आइए लौटते हैं स्वदेश, यानी एक अच्छे आंकड़े आए हैं CPI के, यानी उपभोक्ता मूल्य से संबंधित आंकड़े आए हैं, और हम उन पर श्रोताओं को लिए चलना चाहेंगे. खुदरा मुद्रा स्फीति की दर में थोड़ी सी बदलाव आई है. खुदरा मुद्रा स्फीति दर जुलाई महीने में वार्षिक आधार पर इस वर्ष 4.45% पर बढ़ गई, जो भारतीय रिजर्व बैंक के लक्ष्य 4% से थोड़ा सा ऊपर इस बार भी है. गौरतलब है कि लगातार 2 महीने से हम इसमें इस दर को 4% से ऊपर देख रहे हैं. जुलाई में मुद्रा स्फीति की दर 4.38% पिछले जून में थी, जबकि इस बार थोड़ी सी बढ़त है, मामूली बढ़त. 2024 आधार वर्ष को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए नया बनाया गया.

गया था उसके बाद 4% से ऊपर लगातार दूसरी बार है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की दर यानी खुदरा मुद्रास्फीति की दर 4.84% रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.96% रही थी। खाद्य मुद्रास्फीति जो कि अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक पर आधारित होती है, वह जुलाई महीने में 5.52% रही, जबकि जून में ये 5.32% थी। यानी खाद्य मुद्रास्फीति में अच्छी खासी बढ़त, यानी थोड़ी सी बढ़त हम देख रहे हैं। जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार जुलाई में जो मुद्रास्फीति महंगाई बढ़ी उसमें मुख्य कारण

0: ढाबा है, एकोमोडेशन सर्विसेज, खाद्य और पेय पदार्थ, विशेष रूप से जो मादक पेय पदार्थ होते हैं उनके दाम भी बढ़े हैं। अखिल भारतीय स्तर पर देखें तो चांदी, सोना, हीरा, प्लैटिनम के आभूषणों के दाम अच्छे खासे बढ़े, अदरक भी महंगा हो गया और लहसुन भी महंगा और प्याज भी महंगे हुए हैं इस दौरान। जबकि जिनके दाम कम बढ़े उसमें आलू, भिंडी, टमाटर और मटर शामिल है, और साथ ही वाहन भी, यानी चौपाया वाहन यानी गाड़ियों के दाम भी नहीं बढ़े। कुल मिलाकर इन आंकड़ों पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे सिद्धार्थ जी?
1: नहीं, देखिए मनु जी, जो अभी पिछले हफ्ते जब आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी की जब अनाउंस की थी, तो उन्होंने इस बात के साफ संकेत दिए थे कि वो अभी भी इंटरेस्ट रेट्स को होल्ड कर रहे हैं। आरबीआई को इस बात का अनुमान था कि जो ये मुद्रास्फीति या सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई दर है, इसमें थोड़ा सा इजाफा आएगा। लेकिन हमारे यहाँ जो सरकार ने हमारे जो केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक को जो टारगेट दिया है वो 4% का टारगेट, महंगाई का टारगेट दिया है, और उसको वो बैंड और वो 2% ऊपर और 2% नीचे उस बैंड में उसको वो कंट्रोल कर सकते हैं। साथ साथ उनके ऊपर एक और जिम्मेदारी है कि उनको ये भी इंश्योर करना है कि महंगाई दर के साथ साथ जो हमारी ग्रोथ है उसको भी वो बनाए रखें। और उन्होंने इस बात का साफ संकेत दिया था, क्योंकि चूंकि जब से क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेड था, और फूड इन्फ्लेशन जो कि तकरीबन 37%, अगर आप इंडेक्स का जो सीपीआई का जो इंडेक्स है उसका अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 37% जो है वो फूड जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो उसकी वजह से, और जो पेट्रोल और डीजल के दाम पीछे बढ़ाए गए थे तो उसका असर हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि जो सेंट्रल बैंक ने भी इसीलिए इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए, क्योंकि उनको हाँ चिंता ज़रूर है, क्योंकि मानसून ख़राब है तो, और खास और साथ साथ क्रूड ऑयल के प्राइसेस का जो दबाव है वो बना हुआ है। लेकिन इसके बावजूद उनका ये मानना है कि पूरे साल के लिए ये दिसंबर में जाके कहीं 5% के आसपास पीक करेगा जो हमारा महंगाई दर है, और पूरे साल 5% का एवरेज इन्फ्लेशन, शायद उससे ऊपर ना जाए। तो इसलिए इस समय पे, और ये इन्फ्लेशन क्यों है, क्योंकि हम जो मैंने पहले बोला, क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम बढ़े तो उसका बाकी चीज़ों पर कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, चाहे लॉजिस्टिक्स हो, ट्रांसपोर्ट हो, तो इसी जैसे। और सर, उनको ये भी इंश्योर करना है कि ये जो है ऐसा ना हो कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए तो कहीं ना कहीं ग्रोथ पे नेगेटिव इंपैक्ट हो, तो इसलिए अभी भी वो न्यूट्रल स्टांस सेंट्रल बैंक ने बना
2: के रखा। इन फैक्ट इफ वी लुक एट द अपटिक इन द डेटा 4.4%, सो दैट इट हैज समथिंग आल्सो गॉट टू डू अ बिट विद द न्यू 2024 बेस ईयर सीरीज एज वेल, सिंस दिस इज द फर्स्ट टाइम यू नो दिस डेटा हैज कम व्हेन दिस 2024 बेस ईयर कंज्यूमर प्राइस सीरीज हैज कम इनटू इफेक्ट।
1: Nishit, right. Absolutely right, because this was just introduced in January and yeah. It now it captures a very wide range of items. It gives you a complete picture of the Indian economy, also the latest items. Absolutely. Lot of obsolete Absolutely. Items were discarded.
2: Rightly so, yes.
0: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे ने कमोडिटी बाजार से जुड़े सभी पक्षों से घरेलू बाजार की परिस्थितियों के अनुकूल भारतीय मानक और गुड डिलीवरी मानक विकसित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए मुख्य रूप से वैश्विक मानकों पर निर्भरता कम की जानी चाहिए। मुंबई में आज आयोजित ग्लोबल कमोडिटी कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित करते हुए श्री पांडे ने कहा कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स बाजार की सफलता का आकलन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि वह वास्तविक अर्थव्यवस्था की को कीमतों का पता लगाने और जोखिमों के प्रबंधन में कितना प्रभावी मदद करता है। सेबी कमोडिटी सूचकांकों और भौतिक रूप से निपटाए जाने वाले गैर कृषि कमोडिटी अनुबंधों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई की व्यापक भागीदारी की संभावना पर विचार कर रहा है। एक्सचेंज पर कारोबार होने वाले कम्युनिटी डेरिवेटिव्स में एफपीआई की भागीदारी को लेकर सेबी ने कल एक परामर्श पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि कृषि जींसों के लिए पोजीशन लिमिट पर परामर्श प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 3 अगस्त से सेंसेक्स और एनएसई में कीमतों के अंतर में काफ़ी कमी आई है। इसके पीछे प्रमुख ब्रोकरेज कंपनियों द्वारा सांकेतिक सेटलमेंट कीमतें प्रदर्शित करने सहित कई उपायों का योगदान रहा है। यहाँ पर ध्यान यानी प्रतिक्रिया तो हम पूरी खबर पर आपका चाहेंगे, लेकिन विशेष रूप से जो कम्युनिटी सेगमेंट में एफपीआई के आने की चर्चा चल रही है

0: किन उद्देश्यों के लिए और क्या क्या लाभ इसके दिख सकते हैं?
1: नहीं, जो बात वो कह रहे हैं वो शायद नॉन एग्रीकल्चर डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं मनोज जी, और आज भी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो उसमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन अभी वो केवल कैश सेगमेंट में निवेश करते हैं। अब जो जो नया डिस्कशन पेपर जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो पब्लिक डोमेन में डाला है पब्लिक कंसल्टेशन के लिए, उसमें उन्होंने ये प्रपोज़ किया है कि फिजिकल सेटलमेंट वाले नॉन एग्रीकल्चर डेरिवेटिव, जो कि जैसे सोना चांदी हो या आपके प्रेशियस मेटल्स हों या आप क्रूड ऑयल वगैरह की जो होगी, उसका फिजिकल सेटलमेंट वाले नॉन एग्रीकल्चर डेरिवेटिव सेगमेंट में भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को जो है उनको अलाउ करने की बात है। और उसके पीछे बेसिक कारण एक ये है कि इससे एक तो बेटर प्राइस डिस्कवरी होगी हमारी बाज़ार में, साथ साथ जो हमारे बाज़ारों का इंटरनेशनलाइजेशन भी होगा, क्योंकि विदेश की जितने भी बड़ी मार्केट्स हैं उनमें आप देखेंगे कि उनको जो है किसी भी विदेशी निवेशक को फिजिकल सेटलमेंट वाले नॉन एग्रीकल्चरल डेरिवेटिव्स में भी अलाउ किया जाता है।
2: Right, and moving on to some other stories, Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation to any entity engaged in cooperative development. The corporation can also provide loans and grants directly to any cooperative society or entity engaged in cooperative development. Replying to a discussion, Mr. Mohol said that through this bill, the welfare and economic empowerment of crores of farmers across the country will be strengthened. And in some other story, the global oil supply is expected to fall by 4.3 million barrels per day, that is BPD, to 102 million BPD this year, as renewed hostilities in the Middle East and maritime disruptions in July and early August undermine the recovery efforts. According to the International Energy Agency's oil market report, global oil supply rose by 2.4 million barrels per day in July, but remained 6.3 million BPD below the pre-war levels. It added that the supply is expected to rebound by 8.3 million barrels per day next year. The IEA expects global oil demand to contract by 1.6 million barrels per day this year, as the ongoing closure of the Strait of Hormuz and elevated fuel prices continue to weigh on oil consumption. It said that the demand is projected to expand by 2.4 million BPD, that is barrels per day, in 2027. Siddharth, we'd like to have your comment on this, because the West Asian crisis doesn't seem to get over anytime soon. It's on one day off the other day. So now with this oil supply expected to fall by 4.3 million barrels, that is quite some data, to 1.2 million per barrels per day. How do you see this?
1: Nishit, obviously this would impact the growth, the world growth also, and the obviously the two big reasons are obviously the disruption of the supply, the way the routes are impacted, especially the Strait of Hormuz, and there's still no clarity how far and how soon it will end. Plus the other reason is also the price of crude oil going up, obviously that also brings down the demand, so that also is also leading to the fall in demand. Not only the supply, the demand is coming down because of the supply, but also because of the prices going up.
2: Right.
0: यहाँ पर थोड़ा सा समझना चाहेंगे इस चीज को कि तेल की मांग घटना इस वर्ष क्या कुल मिलाकर पूरी अर्थव्यवस्था यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था के थोड़े घटने के आसार व्यक्त कर रहा क्या?
1: नहीं मनोज जी, देखिए अगर एक बात हम लोग निश्चित तौर पे समझ लें कि क्रूड ऑयल एक बहुत बेसिक वो है,
0: कमोडिटी
1: है, जो चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, मतलब एक बेसिक जिसको ट्रांसपोर्ट हो, लॉजिस्टिक हो, किसी भी सामान, केमिकल सेक्टर, तो जब उसकी कीमत बढ़ेगी तो उस सेक्टर में जहाँ चाहे ट्रांसपोर्ट हो, लॉजिस्टिक्स हो, या किसी तरह के जो सामान जो मैन्युफैक्चर होंगे तो उनकी कीमतें बढ़ेंगी तो या तो कंपनी एब्जॉर्ब करे या पास ऑन करेंगी, तो ऑब्वियसली डिमांड कम होगी, और यहाँ पे कीमतें भी बढ़ रही हैं, साथ साथ उसकी सप्लाई भी घट रही है या अनसर्टेन है, डिसरप्शन हो रहा है। हमने भी जैसे कि बहुत तेज़ी से हम लोग तकरीबन 19 देशों से इंपोर्ट करते थे जब वेस्ट एशिया क्राइसिस शुरू नहीं हुई थी, अब आज हम करीब 40 देशों के

0: से ज़्यादा हम अपनी क्रूड ऑयल की जो सप्लाईज हैं प्लस अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाया है, उसको थोड़ा उसमें बदलाव किया है, तो उससे हम अपने को मैनेज कर रहे हैं।
1: Yeah, and the global crude oil prices were displaying mixed trend today. The Brent crude was trading 0.2% down at $88.71 per barrel in the intraday trade. The West Texas Intermediate crude was trading marginally up at $82.24 per barrel when reports last came in. Quick comment, Siddharth, where do you see the crude going from here?
0: Nishit, I think it's very difficult to say. This is a question, one question I think which nobody would be able to answer. But yes, as long, because we saw it falling in 15 days back, it had almost come below $80. Yes. But again, it has shot up because of the uncertainty.
1: More than
0: and
1: that, Siddharth. If I'm not wrong, it came down to around 70 even.
0: Yeah, 70. That's why I said below 80.
1: Yes.
0: And now
1: yes.
0: again, inching up to $90.
1: Yes,
0: so I think it all depends on what shape the peace talks take and what is the kind of peace which is reached. Because each time they enter into an agreement, it breaks the next day.
1: Correct.
2: आइए आपको लिए चलें सर्राफा बाजार, वहाँ से भी समाचार चमक तेज़ होने के हैं, यानी तेल के साथ सोने चांदी की चमक भी तेज़ हो रही है। भारतीय सर्राफा बाजार में समाचार तैयार किए जाने तक 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.4% की बढ़त के साथ 1,53,419 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था। चांदी भी 0.8% बढ़कर 2,37,214 रुपये प्रति किलो पर चल रही थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से सिद्धार्थ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप दोनों का भी धन्यवाद।
1: थैंक यू सो वेरी मच सिद्धार्थ। एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन। Benchmark domestic indices end with modest losses. Sensex falls nearly 200 points. Nifty settles below 24,450. India's retail inflation rises to 4.45% in July this year. And global oil supply and demand expected to fall this year amid geopolitical headwinds, says International Energy Agency, adds both to rebound next year. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ரத்னா பாண்டே. संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है. राज्यसभा इसे पहले मंजूरी दे चुकी है, लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है. ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है. सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी.
2: सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है. हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया.
1: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है. राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी है, लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है. विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है. विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया.

0: है। संसद के दोनों सदनों ने विधेयक संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर चार लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडर ब्रिज फुट ओवर ब्रिज जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोगिता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बैठक में योजना के प्रमुख पहलुओं और देश भर के विद्यार्थियों के हित में इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता में कल भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। कनाग लक्ष्मी राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजिन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारेशन पद्मा गिशोनिधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation to any entity engaged in cooperative development. The Parliament has also passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it. The Lok Sabha had passed the legislation on Tuesday. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. Both Lok Sabha and Rajya Sabha gave their approval for referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The bill aims to further amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that Home Minister Amit Shah wrote a letter to the Lok Sabha

0: ஒழித்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது இந்த இரவின் மடியில் நிகழ்ச்சி. சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ரத்னா பாண்டே. संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है. राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी है. लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है. ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है. सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी.
2: सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है. हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया.
1: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है. राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी है. लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है. विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है. विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है. संसद के दोनों सदनों ने विधेयक संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी. इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है. लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है. विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर

0: चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर चार लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में पुलिसकर्मियों, अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महाराष्ट्र में इस अवसर पर देशभक्ति रैलियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता में कल भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी एब्राहम। Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation to any entity engaged in cooperative development. The Parliament also passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it. The Lok Sabha had passed the legislation on Tuesday. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. Both Lok Sabha and Rajya Sabha gave their approval for referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The bill aims to further amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that Home Minister Amit Shah wrote a letter to the Lok Sabha Speaker Om Birla stating once again that he is open to having a detailed discussion on the several incidents that took place during the protest on the NEET paper leak issue. Talking to reporters in the Parliament complex, the minister said the government itself is saying that it is ready for a discussion and will provide answers, but the opposition does not want to hear the answers and is shying away from the discussion.
2: The government wants a discussion in parliament while the opposition is running away from it. This is difficult to imagine because in a parliamentary democracy, it is usually the opposition that demands a discussion and the government that responds. But here, the government itself is saying that it is ready for a discussion and will give answers while the opposition does not want to hear those answers and is walking away. We have repeatedly said that we want a discussion, but they are not agreeing to it.

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ரத்னா பாண்டே. संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
2: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
1: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गीरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। रेलवे ने पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर डिवीजन में 295 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 660 किलोमीटर रूट पर कवच प्रणाली लगाने को मंजूरी दे दी है। चौथे चरण के अंतर्गत रेलवे के शेष खंडों पर कवच प्रणाली लगाने को मंजूरी दी गई है। वाणिज्य और उद्योग

0: मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 18 आतंकियों समेत 21 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना के अनुसार सुराब जिले में आतंकी विस्फोटकों से लदी गाड़ी तैयार कर रहे थे, इसी दौरान विस्फोटक समय से पहले फट गए। घटना के बाद सुरक्षा बलों और बलूचिस्तान पुलिस ने संयुक्त अभियान शुरू किया। कांगो में इबोला का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम गेब्रियासिस ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये प्रकोप अब तक का सबसे घातक इबोला प्रकोप बन सकता है। कांगो में अब तक 4,300 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 2,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता में कल भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष पी एब्राहम। Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation to any entity engaged in cooperative development. The Parliament has also passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it. The Lok Sabha had passed the legislation on Tuesday. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. Both Lok Sabha and Rajya Sabha gave their approval for referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The bill aims to further amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010. The objective of this bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. The report of the inquiry committee investigating allegations concerning former Allahabad High Court Judge Yashwant Verma was tabled in both the Houses of Parliament. The Judges Inquiry Committee investigating allegations concerning Yashwant Verma had submitted its report to the Lok Sabha Speaker Om Birla in May this year. The committee was constituted by Mr. Birla on the 12th of August last year to probe the allegations levelled against Justice Verma after a sum of burnt cash was found at his official residence in New Delhi. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that Home Minister Amit Shah wrote a letter to the Lok Sabha Speaker Om Birla stating once again that he is open to having a detailed discussion on the several incidents that took place during the protest on the NEET paper leak issue. Talking to reporters in the Parliament complex, the minister said, "The government itself is saying that it is ready for a discussion and will provide answers, but the opposition does not want to hear the answers and is shying away from the discussion."
2: The government wants a discussion in parliament while the opposition is running away from it. This is difficult to imagine because in a parliamentary democracy, it is usually the opposition that demands a discussion and the government that responds. But here, the government itself is saying that it is ready for a discussion and will give answers while the opposition does not want to hear those answers and is walking away. We have repeatedly said that we want a discussion, but they are not agreeing to it.
1: University Grants Commission UGC has issued 16 letters of intent LOIs to foreign higher educational institutions from Australia, Italy, UK and the US. Minister of State for Education Dr. Sukanta Majumdar said this in a written reply in the Rajya Sabha.

0: கேட்ட பாடலோடு நிறைவு பெறுகிறது இன்றைய நெஞ்சம் மறப்பதில்லை. இன்றைய நிகழ்ச்சியில் சின்னத்தம்பி பெரிய தம்பி மற்றும் வேலைக்காரன் ஆகிய திரைப்பட பாடல்கள் உலா வந்தன. பண்பலை இனி தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ரத்னா பாண்டே. संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर चार लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। रेलवे ने पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर डिवीजन में 295 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 660 किलोमीटर रूट पर कवच प्रणाली लगाने को मंजूरी दे दी है। चौथे चरण के अंतर्गत रेलवे के शेष खंडों पर कवच प्रणाली लगाने को मंजूरी दी गई है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। श्री शाह ने बताया कि करीब 63 गांवों में पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज सुबह 4 बजे से 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राजमार्ग और आसपास की कई सड़कों

पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में पुलिसकर्मियों, अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महाराष्ट्र में इस अवसर पर देशभक्ति रैलियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता में कल भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: இதுவரை கேட்டு மகிழ்ந்தது இனிய ராகம். ஆகாஷ்வாணியின் எஃப்எம் கோல்டு 100.1 மெகாஹெர்ட்ஸில் பண்பலில் இனி தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ரத்னா பாண்டே. संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। श्री शाह ने बताया कि करीब 63 गांवों में पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज सुबह 4 बजे से 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेवल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राजमार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में पुलिसकर्मियों, अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महाराष्ट्र में इस अवसर पर देशभक्ति रैलियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता में कल भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। कनाग लक्ष्मी राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजिन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारेशन पद्मा गिशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में

चांदनी चौक रोड, निषाद राज मार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी है। जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी पर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में पुलिसकर्मियों, अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महाराष्ट्र में इस अवसर पर देशभक्ति रैलियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ किया। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। श्री शाह ने बताया कि करीब 63 गाँवों में पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर माथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण अब राज्य में लागू नहीं रहेगा। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि पूर्व प्रणाली के अंतर्गत जारी प्रमाण पत्रों की वैधता समाप्त हो गई है। ऐसे प्रमाण पत्र वाले व्यक्तियों को अब सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास के लिए किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा कि केरल विधानसभा 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरलम करने का अनुरोध किया था। मलयालम में राज्य का नाम केरलम है, लेकिन संविधान में इसे केरल लिखा गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद भवन परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा रोड ओवर अंडरब्रिज, फुट ओवरब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी डिजीलॉकर रिजल्ट पोर्टल के माध्यम से results.digilocker.gov.in पर अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। उधर नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता में कल भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।